स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की

0: इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृह मंत्री त्रिपुरा के दो दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण में हमारी सभा के शेष रहे प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण।

रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बाहर का। श्री रामचरित मानस गान आप सुन पाएंगे 7:20 पर। 7:30 समय रहेगा कार्यक्रम नमस्कार चूरू का। 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। इनका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गजलें। 9:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। 9:10 पर आप सुनेंगे देशगान। 9:15 समय रहेगा मरुवाणी का, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे लोक रचनाएं। 9:30 पर आप सुनेंगे फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। 10:00 विविध भारती के कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे 12:00। माटी के स्वर कार्यक्रम में होंगे कलाकार अलाउद्दीन लंगा और पार्टी, समय रहेगा 12:30। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे 1:00, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। महिलाएं सुन पाएंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत, समय रहेगा 1:05। दोपहर 2:00 आप सुनेंगे पहले मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार, इनका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। तराने नए पुराने, ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 2:30 पर। शाम 4:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ ही हमारी दूसरी सभा का आगाज होगा। 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:55 पर कार्यक्रम विवरण होगा। 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 6:30 पर आप सुनेंगे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। इन समाचारों का रिले आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा। किसान श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी, समय रहेगा 7:00। 7:30 पर राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। रात्रि 8:00 श्रोताओं आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 8:45 समय रहेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज एट 9 का। 9:15 पर सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कंट्री वाइड का रिले किया जाएगा। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

मित्रों, जीवन एक दर्पण की तरह है। यदि हम इसमें मुस्कुराहट देखते हैं तो यह मुस्कुराता है। यदि हम शिकायतें देखते हैं तो हमें यह और अधिक तनाव देता है। सकारात्मकता का अर्थ यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। पॉजिटिविटी का अर्थ है समस्याओं के बीच भी समाधान की दृष्टि रखना। श्रोताओं, हमारे यहाँ की तपती रेत में भी जब कोई खेजड़ी का वृक्ष हरा भरा खड़ा रहता है तो वह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में भी जीवित रहने और मुस्कुराने का साहस कैसे रखा जाता है। सकारात्मकता एक चुनाव है जो हम हर सुबह उठते ही करते हैं।

अब साथियों बात करते हैं उस भावना की जो किसी भी नकारात्मकता को पल भर में यानी चुटकी में समाप्त कर सकती है, वह है आभार। जी हाँ, आभार की भावना। आभार केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह महसूस करने की एक कला है। जब हम उस ईश्वर, उस प्रकृति और उन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को संवारा है, तो हमारा मन एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है। साथियों, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो व्यक्ति आभार प्रकट करना जानता है उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार आता है। आज आप अपने आसपास देखिए, क्या आपने उस माँ का आभार माना जिसने सुबह नाश्ता बनाया? क्या आपने उस सहकर्मी का शुक्रिया अदा किया जिसने काम में आपकी मदद की? आभार की भावना हमारे व्यक्तित्व को विनम्र और समृद्ध बनाती है।

इसलिए साथियों आज हम अपने इस परिवार, इस समाज और शहर से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मकता और आभार का बीज बोएं। श्रोताओं आपको बता दें, इतनी ही बात कहेंगे कि सकारात्मकता और आभार एक ऐसी कुंजी है जो खुशहाली के सभी दरवाजे खोल सकती है। आज से ही कोशिश कीजिए कि किसी की कमी निकालने की बजाय उसे और उसकी अच्छाई को देखें और अपना दिन शुक्रिया कह के बिताएं। आप सभी का आभार, इस समय आप हमारे साथ जुड़े।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हम अनूप जलोटा के गाए हुए इस प्यारे से भजन से।

अनूप जलोटा की आवाज में आप सुन रहे थे ये प्यारा सा भजन। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये प्यारा सी भक्ति रचनाएं। संगीत है धनंजय मिश्रा का।

हरिओम शरण और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं, और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाजों में। फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

रफु चक्कर, इस फिल्म का गीत आप सुन रही थी शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाजों में, गुलशन बाबरा की शब्द रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनिए, फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। मजरूह सुल्तानपुरी ने शब्द लिखे हैं और संगीत आरडी बर्मन ने दिया है।

कश्मीर की कली इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज मोहम्मद रफी की है। एस एच बिहारी ने शब्द लिखे हैं और ओपी नैयर ने तर्ज

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, लता मंगेशकर की आवाज में सुनवा रहे हैं काली चरण फिल्म का गीत।

लता मंगेशकर को आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है कर्तव्य। कफील असर ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कर्तव्य में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है काजल फिल्म से, आवाजी मोहम्मद रफ़ी और साहिर लुधियानवी की है, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और रवि का संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुनवा रहे हैं फिल्म काला पत्थर में। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और राजेश रोशन ने संगीत दिया है।

कालिया फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की है। गीतकार हैं मसरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। कलाकार हैं सुरेश वाडकर और संगीत है सतीश भाटिया का। कड़ी है 396।

एक दिन काकभुशुंडी सुमेरु पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष के नीचे बैठे लोमश ऋषि के पास जा पहुंचे। उनकी विनम्रता देख और दीन वचन सुनकर ऋषि ने उनके वहां आने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण रूप काकभुशुंडी ने ऋषिवर से सगुण ब्रह्म की आराधना का ज्ञान देने की प्रार्थना की। मुनिवर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। कई उपमा उपमेयों द्वारा लोमश ऋषि ने ब्रह्म के स्वरूप

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, कलाकार थे सुरेश वाडकर और संगीत सतीश भाटिया का, कड़ी थी 396। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार चूरू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपका रेडियो साथी चंद्र प्रकाश बेदी। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारे काम आता है। जी हाँ, हमारा व्यवहार। दोस्तों, जीवन एक सफर है और इस सफर में हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। कोई हमें जीवन भर याद रहता है तो कोई पल भर में भुला दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या वो हमारी शक्ल है? क्या वो हमारा रुतबा है? जी नहीं, वो है हमारा व्यवहार, हमारी वाणी में मिठास, हमारी आंखों में सम्मान और हमारे कार्यों में ईमानदारी ही हमें असली पहचान बनाती है। श्रोताओं, आपने पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, आप क्या है ये दुनिया को तब पता चलता है जब आप दूसरों के साथ पेश आते हैं। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह आपके संस्कारों और आपकी परवरिश का प्रमाण है। याद रखिए, लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लोग आपका नाम भूल सकते हैं, लेकिन आपने उनके साथ कैसा महसूस करवाया ये कोई नहीं भूलता।

साथियों, आज के इस डिजिटल युग में जहां सब कुछ बहुत तेज हो गया है, हम अक्सर अपनों से बात करने की तमीज या एक मुस्कान देना भूल जाते हैं। पर सोचिए, अगर हम अपनी बातों में थोड़ी नरमी और व्यवहार में थोड़ा ठहराव लाएं, तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। इसी बात की खूबसूरती को बयां करने के लिए आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ साथियों, जिंदगी कैसी है ये पहेली हाय, ये सब हमें एक ही बात सिखाते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसे नफरतों और घमंड में नहीं बल्कि प्यार और व्यवहार से जीना चाहिए। तो आज अपने रेडियो के सभी श्रोताओं से गुजारिश कि आज किसी भी एक अजनबी के साथ जब भी आप मुलाकात करें तो मुस्कुरा कर बात करें, किसी एक जरूरतमंद की मदद जरूर करें और अपने व्यवहार में किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं। यकीन मानिए, जो सुख आपको दूसरों को खुश करके मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। साथियों, अब आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। शेखावाटी में हवेली स्थापत्य संरक्षण एवं पर्यटन विषय पर अनुराग शर्मा से अमित कुमार की बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। साथियों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो हमारा ध्येय मंत्र है, आकाशवाणी विगत 90 वर्षों से इसी ध्येय मंत्र के साथ कार्य कर रहा है। जब बात करते हैं हम कला संस्कृति इनके संरक्षण की, तो एक कला आती है स्थापत्य कला, और इस स्थापत्य कला में जब हम हमारे शेखावाटी क्षेत्र जिनमें सीकर चूरू झुंझुनू की बात करते हैं, तो हवेली बहुत बड़ा नाम आता है, क्योंकि हमारे चाहे चूरू जिले की बात हो या झुंझुनू जिले की बात हो, इधर की जो हवेलियाँ हैं वो पर्यटकों को अपने आप आकर्षित करती है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को विस्तार देने हेतु शेखावाटी में हवेली संरक्षण पर एक

0: बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी स्टार्ट किया है, तो किस प्रकार से हवेली संरक्षण का काम किया जा रहा है उस पर हमने आज बात करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया है चूरू जिले के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्री अनुराग शर्मा जी को। अनुराग जी, सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: जब हम बात करते हैं चूरू की या शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों की, तो अपने आप में बहुत शानदार इनकी इमारतें है ना, अपने आप में आकर्षक भी है। क्या इस प्रकार हवेलियों की संरचना एवं उसके आर्किटेक्ट के बारे में हमारे श्रोता साथियों को थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जी अमित जी, राजस्थान सरकार का जो पर्यटन विस्तार हेतु यह कदम है, हवेली संरक्षण का जो कदम है, वो निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर और अच्छा कदम है। इससे न सिर्फ चूरू अपितु संपूर्ण शेखावटी को रोजगार के अवसर काफी मात्रा में मिलेंगे। हम बात करें हवेली की, तो हवेली संरचना जो है अपने आप में इसका जो आर्किटेक्चर है वो एक अद्भुत आर्किटेक्चर है। आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त जब आर्किटेक्ट और इंजीनियर नहीं हुआ करते थे, मेसन्स ने जो इसकी डिजाइन की है वो बिल्कुल क्लाइमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग है। अपन बात करें कि वास्तु की बात करते हैं, तो जितनी भी हवेलीज डिजाइन हुई है वो सब की सब हवेलीज हैं, वो वास्तु फ्रेंडली हवेलीज हैं। आप देखेंगे कि हवेली की जो वॉल थिकनेस है, दीवारों की जो वॉल थिकनेस है, वो लगभग मिलेगी आपको 24 इंच 18 इंच। तो जो टेम्परेचर का असर पड़ता है चूरू या शेखावटी एरिया पूरा का पूरा, जहां एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो वॉल थिकनेस आज जो हम डिजाइन कर रहे हैं वर्तमान इरा में, तो हम कैविटी वॉल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो इंटीरियर टेम्परेचर है उसको बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है उसको मिनिमाइज कर सके। तो हवेली का उस वक्त जो निर्माण हुआ था, तो 24 इंच की दीवार अपने आप में एक थर्मल इंसुलेटेड वॉल का काम करती है, तो आपका जो रूम टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता था एक्सट्रीम हीट तीखी गर्मी में भी और बहुत ज्यादा सर्दी में भी, तो इंटीरियर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता था। अब हवेली आर्किटेक्चर पर आए, इसकी स्थापत्य कला पर आए, तो मोस्ट ऑफ द हवेलीज आर हैविंग कोर्टयार्ड कंसेप्ट। बीच में से वो खुला रहता था और एक कोर्टयार्ड कंसेप्ट था। कोर्टयार्ड कंसेप्ट में एक तो आप अभी जो जितने भी मकान बन रहे हैं वो एनक्लोज्ड है, लिमिटेशन है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है स्पेस लिमिटेशन है, बनाने पड़ते हैं। लेकिन कोर्टयार्ड कंसेप्ट में जो पहली चीज है प्रायोरिटी की, यू आर डायरेक्टली इन कनेक्ट विद एनवायरमेंट। आप जो भी आउटर एनवायरमेंट है उससे आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने आप को। उसके बाद जो विंड सर्कुलेशन है, हॉट विंड ऑलवेज ट्रेवल्स टुवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो गर्मी जो है वो कोर्टयार्ड कंसेप्ट का सबसे अच्छा था कि लाइट और वेंटिलेशन वहां से आ रही है, आपकी जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, तो गर्म हवा है वो कोर्टयार्ड के थ्रू निकलती थी। ये एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट हवेलीज में देखने को मिलता है। और इसके स्थापत्य पर आए, ओपनिंग्स जो है उस वक्त बहुत छोटी ओपनिंग थी। उस वक्त अपने पास जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वेंटिलेशन है वो नहीं हुआ करते थे, पंखे भी नहीं थे, एसी भी नहीं थे, कूलर भी नहीं थे, तो एक स्मॉल ओपनिंग से अगर आपकी हवा आ रही है तो वो प्रेशर से आएगी, तो वो एक छोटी ओपनिंग जिससे लाइट भी आ रही थी, प्लस अगर उसको आपने विंडो को खोल दिया, खिड़की को खोल दिया, तो अपने आप से इतने प्रेशर से हवा आती थी कि वो एक पंखे का काम करती। तो जो हवेलीज उस वक्त डिजाइन की गई थी वो टोटली एक साइंटिफिक वे में डिजाइन हुई थी।
0: जी, आपने बताया कि किस प्रकार से हवेली की संरचना है और उसका आर्किटेक्चर है वो बहुत पुराने समय में साइंटिफिकली है वो डिजाइन किया गया था। आज भी जब देखते हैं हम वर्तमान में, जब इतनी भयंकर गर्मी होती है तो लगभग जगह एसी की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन जो पुरानी हवेलियों में बैठकर भी विदाउट एसी भी आपको इतनी गर्मी नहीं लगती है। जब हम बात करते हैं पर्यटन की, और पर्यटन में शेखावटी क्षेत्र में सबसे बड़ा सुरमौर है वो यहाँ की हवेलियां ही है, तो किस प्रकार से राजस्थान सरकार पर्यटन के क्षेत्र में है वो हवेलियों के उद्धार के लिए कार्य कर रही है?
1: देखिए, एक जो प्राइमरी सवाल आता है कि हवेली ही क्यों पर्यटन में, तो इसमें आप पाएंगे कि जो हवेलीज का आर्किटेक्चर है, इसकी जो पेंटिंग्स है, भित्ति चित्र जो है, जो फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं अपन, भित्ति चित्र जो है, ग्लास पेंटिंग्स जो है, वो अपने आप में अद्भुत है। उस वक्त जो पेंटिंग्स की गई थी वो यह नहीं है कि उन्होंने मर्जी से कर दी, हर जो पेंटिंग है वो कोरिलेट

0: रिकॉर्डिंग है किसी न किसी इंसिडेंट से, वो अपने आप में एक हिस्ट्री को बयान करती है। उसके बाद जैसे टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, रामगढ़ में आ रहे हैं, मंडावा में आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं, प्लस अगर ये इस तरह का राजस्थान सरकार कदम उठा रही है तो आपके पास तो स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है दिखाने के लिए। आप अगर पर्यटन यहाँ आ रहा है तो एक निश्चित रूप से रोजगार का एक अच्छा अवसर यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको मिलेगा। रोजगार किस तरह से मिले, तो हवेलीज जो है उनको रेस्टोर करना जरूरी है। आज हो सकता है कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन वो अगर हवेली हेरिटेज को रिफ्लेक्ट कर रही है, अपने मोनूमेंट्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको जो एडेप्टिव रीयूज ऑफ हवेलीज है उसको अपन कह सकते हैं कि इसको एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट करने के लिए ठीक है थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन होता है, लेकिन एक अच्छा हेरिटेज होटल बन सकता है। होटल बनाने में कोई सक्षम नहीं है तो एक म्यूजियम बन सकता है, म्यूजियम रिफ्लेक्टिंग अवर एंशियंट कल्चर ओनली, उसमें जो अपने पुराने जो सामान हैं, अपने जो पूर्वज हैं वो किस तरह से रहा करते थे, क्या रखा करते थे, तो वो इस तरह का एक म्यूजियम बन जाए जिससे कि आज की जनरेशन को वो पता भी लगे कि हमारा पुराना आर्किटेक्चर क्या था, हमारे जो पूर्वज हैं वो किस तरह से रहा करते थे, प्लस वो अपने दिनचर्या में अपने जीवन में किस तरह के आइटम्स को यूज किया करते थे। इसके अलावा गैलरीज है, गैलरीज में जैसे भित्ति चित्र अपने आप में मैं बोल रहा हूँ कि वो किसी न किसी इरा को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो गैलरीज अपन इस तरह की बनाए कि अपने राजस्थान का आर्किटेक्चर, अपने इंडिया का आर्किटेक्चर, अपना लोकल शेखावटी का नॉट ओनली आर्किटेक्चर लेकिन इनकी जो जीवन शैली है वो इस तरह का कुछ सरकार करे कि गैलरीज में हमें अपने हिस्ट्री का पता लगे। होम स्टे टाइप कुछ चीज डेवलप कर सकते हैं, मतलब लोकल हेरिटेज होटल डेवलप करने में हर कोई सक्षम नहीं होता, तो होम स्टे सॉर्ट ऑफ समथिंग अपन अगर डेवलप कर लें तो एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव चीज अपन प्रोवाइड कर सकते हैं टूरिज्म में टूरिस्ट को, जिससे कि वो आए यहाँ विजिट करें और होम स्टे टाइप कुछ कॉस्ट इफेक्टिव अपन उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें।
1: जी, आपने बताया कि किस प्रकार से जब यहाँ का पर्यटन अगर बढ़ता है तो न सिर्फ हेरिटेज होटल के रूप में, साथ ही साथ होम स्टे की अगर व्यवस्था दी जाए तो एक परिवार के लिए अतिरिक्त आमदनी की व्यवस्था भी हो जाती है, क्योंकि चूरू में बहुत सारी हवेलियां हैं, उनका अगर कोई टूरिस्ट विजिट भी करना चाहता है तो 3 या 4 दिन का उसका टूरिज्म है वो चूरू का हो जाता है, तो वहां पर टूरिस्ट गाइड की भी आवश्यकता होगी, वो भी एक अलग से रोजगार की है वो पूर्ति करता है।
0: निश्चित रूप से जो इस का हवेलीज का नॉलेज रखते हो टूरिज्म गाइड उनको भी एक बहुत अच्छा रोजगार की व्यवस्था यहाँ मिलेगी।
1: जब अपन बात करते हैं भित्ति चित्रों की और शेखावटी की भित्ति चित्र है वो विश्व प्रसिद्ध है, तो इन भित्ति चित्रों में किस प्रकार का कौन कौन सी सामग्री है वो उपयोग की जाती है, एवं आपने बताया था कि एंशियंट टाइप के चित्रण अधिक होते हैं, तो इस पर थोड़ा व्याख्या करिए ताकि हमारे जो समस्त प्रकार के श्रोता है वो इसको आसानी से समझ पाए।
0: इसमें देखिए भित्ति चित्र जो है बनाए गए थे उस वक्त तो उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल यूज नहीं किया, आर्टिफिशियल एलिमेंट उनके पास नहीं था, वो जो उपलब्ध सामग्री थी अपने जो फ्लोरल पैटर्न थे अपनी जो वेजिटेशन थी उन्हीं को यूज करके उन्होंने उस वक्त भित्ति चित्र बनाए, और आप देखेंगे कि जो भित्ति चित्र हमारे सैकड़ों साल पुराने हैं वो आज भी उसी अवस्था में है। उसका रीजन ये है कि जो मटेरियल उन्होंने यूज किया वो नेचुरल मटेरियल था, नेचुरल फ्लावर्स से नेचुरल वेजिटेशन था, उसी को उन्होंने इसमें यूज किया। एक और अच्छी चीज जो भित्ति चित्र से पहले यूज होती थी वो था कि उस वक्त अब सीमेंट का प्लास्टर यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द हवेलीज में आप देखेंगे कि लाइम प्लास्टर यूज होता था, जो चूना प्लास्टर है वो चीज यूज होती थी। दूसरा, इस एरिया में जो रह रहे हैं बेसिकली जो हवेलीज में जो पत्थर यूज होता है उसको हम बोलेंगे धांधला बाटा, लोकल लैंग्वेज में हम बताएंगे धांधला बाटा, तो वो चीज उसमें हवेलीज में जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट वॉल की चुनाई में जो यूज होता था वो पत्थर यूज होता था, जो आजकल के कंस्ट्रक्शन में और उस कंस्ट्रक्शन में ये वेरिएशन है कि अब आरसीसी और ब्रिक ने उनका स्थान ले लिया है।
1: जी, आपने बहुत ही गहराई से है वो आर्किटेक्चर हवेली की किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में बताया, और निश्चित रूप से जो हवेली का जो आर्किटेक्ट होता है जब हम हवेली भ्रमण करते हैं तो वहाँ के जो गोरखे हैं या लटान है या अन्य जो

0: गुंबद है वो अपने आप में आकर्षित भी करते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है नए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं। आप हवेली पर्यटन के संरक्षण की बात करें और जो टूरिस्ट को और अधिक सेकावटी में जोड़ने की बात करते हैं, तब एक बड़ा जो आगे चैलेंज आने वाला है वो है ट्रैफिक मूवमेंट। तो किस प्रकार से जो ट्रैफिक मूवमेंट को मैनेज किया जाएगा और सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है?
1: बिल्कुल, हवेलीज का जब कंस्ट्रक्शन हुआ, सैकड़ों साल पहले कंस्ट्रक्शन हुआ, उस वक्त अपने पास वेहिकुलर मूवमेंट नहीं था। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वेहिकुलर मूवमेंट हो गया, तो उस वक्त जो हवेलीज डिजाइन की गई थी, मोस्ट ऑफ द हवेलीज देखेंगे कि 15 फीट रोड पर है, 20 फीट रोड पर है, रोड की विड्थ नहीं है। अगर आप टूरिज्म बहुत ज्यादा यहाँ होता है तो वो जो रोड विड्थ है वो अपने आप में एक ट्रैफिक की बड़ी समस्या क्रिएट करती है, और ये इससे जो टूरिस्ट है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये हो सकता है कि सरकार इस तरह का कोई सेंटर डेवलप करे, पार्किंग कुछ एरिया डेवलप करे कि प्रेस्क्राइब्ड पार्किंग हो टूरिज्म के लिए, कि यहाँ आप गाड़ी पार्क करें, और उसके बाद कोई एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग की बात चल रही है, एनर्जी एफिशिएंसी की बात चल रही है, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं उसकी बात चल रही है, तो आप वहां से एक ई व्हीकल प्रोवाइड कीजिए जो कि आपका जो कॉरिडोर है उसमें मूवमेंट करे, और आपको जो हवेली विजिट के लिए कोई एक ऐसा कॉरिडोर बना दिया जाए जिसमें उस ई व्हीकल के थ्रू टूरिस्ट को विजिट करवाया जाए।
0: जब हम बात करते हैं हवेलियों की, तो हवेलियों में जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जालियों का, जो अपने आप में पर्यटकों को लुभाता भी है, तो जालियों के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताइए।
1: जी अमित जी, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द हवेलीज की जो ओपनिंग है उनमें जो स्टोन जाली है वो प्रोवाइड की जाती है। ये परफोरेटेड स्टोन जाली जो है या वुडन स्क्रीन जो है वो सनलाइट को डिफ्यूज करती है। डिफ्यूज सनलाइट आप अंदर ले रहे होते हैं। अगर आपने फ्रंट में जाली का कुछ एलिमेंट लगा दिया तो दैट इज नॉट ओनली ए एस्थेटिक एलिमेंट, बट उससे क्या हो रहा है कि आपको डिफ्यूज सनलाइट अंदर आ रही है, इससे आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन हो रही है, प्लस एस्थेटिकली भी और आर्किटेक्चरली भी एक सुंदर एलिमेंट बनता है।
0: जी अनुराग जी, आपने हवेली संरक्षण के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बहुत ही शानदार जानकारी दी है, और उम्मीद करते हैं जो सेकावटी क्षेत्र में जो हवेलियां हैं उनके संरक्षण के लिए बहुत अधिक कार्य होंगे, और जो भी जानकारी आपने दी है वो प्रत्येक श्रोता के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। शेखावाटी में हवेली स्थापत्य संरक्षण एवं पर्यटन विषय पर अनुराग शर्मा से अमित कुमार की बातचीत। श्रोताओं, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी डोर की भी बात करेंगे जो हमें कुदरत से जोड़ती है। साथियों, हम अक्सर अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन लोगों को देखना भूल जाते हैं जो बोल नहीं सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे आसपास रहने वाले उन बेजुबानों की, पशु और पक्षियों की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चिड़िया को दाना खिलाने या प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने में जो सुकून मिलता है वह दुनिया की किसी और चीज में नहीं। इंसान होने के नाते सबसे बड़ी कसौटी इंसान की यही है कि हम कमजोरों की रक्षा करें। किसी के लिए करुणा दिखाना, किसी बेसहारा जीव के लिए अपना हाथ बढ़ाना, ये महज दया नहीं है साथियों, ये आपकी इंसानियत है, आपकी पहचान है। याद रखिए, जो इंसान बेजुबानों के दुख को समझ सकता है वही सही मायने में इंसान कहलाने के लायक है।

श्रोताओं एक छोटी सी अपील है, घर की छत पर एक बर्तन में पानी जरूर रखें, किसी भूखे को खाना खिलाएं। आपका ये छोटा सा व्यवहार न केवल उस बेजुबान की जान बचाएगा बल्कि आपकी अपनी पहचान को एक महान व्यक्तित्व में बदल देगा।

साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि समय के साथ तकनीक ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना। साथियों, क्या आप जानते हैं कि अब आपको अस्पताल में लंबी कतारों में लगने या अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स फाइलों को ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस योजना का उद्देश्य है आपकी सेहत को डिजिटल बनाना। इसके तहत

आपका एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा। अब आपकी बीमारी का इतिहास, आपकी दवाइयाँ, आपकी रिपोर्ट, सब कुछ एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाएंगे तो डॉक्टर आपके पिछले रिकॉर्ड्स को सिर्फ एक क्लिक में देख सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का रिले किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
4: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
6: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके

0: साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
4: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
3: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
5: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका

0: विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
1: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच, अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ता ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
5: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
4: Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council, NEC, in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made on tourism, agriculture and horticulture, investment promotion and handloom and handicrafts. Union Minister for Development of Northeastern Region, Jyotiraditya Sindhya, Minister of State Sukanta Majumdar, governors and chief ministers of all the 8 northeastern states, other members of NEC and senior officers of central and state governments will be present at the meeting. U.S. Secretary of State Marco Rubio told lawmakers that the United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement, responding to questions about his recent visit to India during a House Foreign Affairs Committee hearing last night. Rubio said Washington and New Delhi are nearing completion of the pact. We have a report.
6: Secretary Rubio repeatedly highlighted India as an important strategic partner in the Indo-Pacific, signaling growing momentum in economic ties between the world's largest and oldest democracies. He said his visit to India also included discussions with counterparts from the Quad, a grouping comprising India, the United States, Japan, and Australia. Mr. Rubio indicated that the four countries are moving beyond dialogue towards concrete projects, including enhanced maritime cooperation across the Indo-Pacific. Earlier, U.S. Ambassador to India, Sir Sergio Gore, also said that 99% of work on the trade deal is done.
7: We're very optimistic. Look, we're 99% there. The last 1% we're working on, to put it into perspective, we've been working on this deal for a year and a half. You have two like-minded partners, the United States and India, that want to get this done. And the incredible thing about this is it will be a win-win situation for both of our countries.
6: Meanwhile, Mr. Rubio further highlighted a new initiative known as Pax Silica, involving 14 countries working together to secure supply chains linked to artificial intelligence. With Vishal's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
4: Varanasi, the parliamentary constituency of Prime Minister Modi and one of the world's oldest living cities, is once again set to witness a historic international event. After successfully hosting G20 meetings, Varanasi will now host the second meeting of the BRICS Culture Working Group today and tomorrow. Representatives from 11 countries including China, Brazil, Egypt, Ethiopia and Indonesia will take part in this meeting. The meeting will bring together senior diplomats, policy makers and cultural experts. More from our correspondent.
8: A special exhibition of Kashi's world-famous GI Tagged and ODOP, that is One District, One Product products, will also be organized during the meeting. At the exhibition, six artisans will display six unique products representing Varanasi's rich craft traditions. These products are living symbols of Kashi's centuries-old art, craftsmanship and cultural heritage. Through the exhibition, foreign delegates will not only be introduced to the uniqueness of these products, but local artists and artisans will also get an opportunity to showcase their products to the global market. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
4: The India Meteorological Department or IMD has issued an orange alert for heavy rainfall in Keralam and Mahi today. Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan, Telangana and Vidarbha are likely to witness thunder squalls today, while a dust storm is expected in parts of West Rajasthan. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards ease of doing business. A report.
9: India has undertaken sustained reforms over the past 12 years to improve its business regulatory environment and improve ease of doing business. These reforms have strengthened investor confidence, promoted entrepreneurship, and enhanced India's position as a globally competitive business destination. Startup India initiative, launched in 2016, is nurturing innovation, promoting entrepreneurship, and enabling investment-driven growth. Due to the efforts of the government, the number of startups has gone up to 2,23,000 in March this year from just around 500 in 2016. The Income Tax Department launched the new e-filing portal in June 2021 to provide greater taxpayer convenience and a modern, seamless experience. GST was introduced in 2017.

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: इस ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम, और इसमें आपको सुनवा रहे हैं गजलें। अब जो गजल आपको सुनवा रहे हैं वो हैं राजेंद्र मेहता, सुरेंद्र मलिक और गुमनाम की।

ये प्यारी सी गजल आप सुन रहे थे नीना और राजेंद्र मेहता साथ ही सुरेंद्र मलिक की आवाजों में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है मिताली सिंह की आवाज में ये प्यारी सी गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुर संगम कार्यक्रम में गजलें। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित। आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। 5 दिन के इस आयोजन में 70 से अधिक देशों के लगभग 500 एथलीट भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में पारंपरिक कलात्मक योगासन और लयबद्ध युगल सहित कई विधाएं शामिल होंगी। चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों में पुरुष और महिला एथलीटों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों के लिए 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। उन्होंने इसे जमीनी स्तर पर विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आधुनिक शासन में तकनीक की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायत प्रशासन में AI, डिजिटल उपकरणों और नवाचारों को अधिक अपनाने की आवश्यकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम करिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
1: इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 34 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। साथ ही नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कल अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कृषि गोष्ठी में उन्होंने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करते हुए परंपरागत खेती पद्धति की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। रासायनिक उर्वरकों के बहुत अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। इस दौरान मंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल अपने आवास

0: पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही महिलाओं से संवाद किया। इसमें संबल सखी तथा माई भारत के माध्यम से समाज सेवा, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में उन्होंने प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने विचार, अनुभव और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों को मुख्यमंत्री से साझा किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत देश में उल्लेखनीय बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने उप निरीक्षक दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि अदालत ने दिनेश कुमार को 8 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। मामले में उसकी बहन निर्मा कुमारी की तलाश भी अभी जारी है। दोनों ने परीक्षा से पहले हल किया हुआ प्रश्न पत्र हासिल किया और उसी के आधार पर 15 सितंबर 2021 को आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा दी। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज अंधड़ और बारिश की गतिविधियां जारी हैं। आज भी कई स्थानों पर बारिश होने के समाचार हैं। सवाई माधोपुर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बरसात हो रही है। बारह में शाम से शुरू हुआ बूंदाबांदी का दौर रुक रुक कर आज भी चल रहा है। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में तेज रफ्तार हवा के साथ कुछ देर झमाझम बरसात हुई।
1: बुधवार रात्रि को मौसम में पुनः परिवर्तन हुआ और गुरुवार सुबह भीलवाड़ा जिले के आसीन सम्भूगढ़ और गुलाबरा क्षेत्र में कुछ समय के लिए तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण आम जन को गर्मी से राहत मिली है। आज हुई बारिश के बाद अब किसान आगामी दिनों खरीफ की फसल की बुआई के लिए अपने खलिहानों की हकाई जुताई में जुट जाएंगे। लगातार 3 दिन पूर्व हुई बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सोमगत त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा।
0: मौसम में आए इस बदलाव से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर कल भी दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 43.7 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज भी 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो और 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है।

0: मनाली में आज से 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। पुलिस लाइन हॉकी मैदान पर शाम को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने टीम के टी शर्ट्स का विमोचन किया और मैदान का निरीक्षण किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 25 टीमें भाग लेंगी। 3 दिन चलने वाली ये स्पर्धा नॉकआउट पद्धति से होगी। वहीं पाली की निलंजना चौधरी ने जकार्ता में आयोजित इंटरनेशनल रोलर स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना उनके निरंतर अभ्यास का परिणाम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित, आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह सुरों में देश गान।

अभी श्रोता सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के चूरू केंद्र से मैं आज आपके साथ रेडियो साथी चंद्र प्रकाश बेदी आपका लेकर आया हूं चहेता प्रोग्राम दिल से दिल तक। जी हां श्रोताओं, एक ऐसा मंच जहां दूरियां सिमट जाती है और हमारे जज्बात सीधे एक दूसरे के दिल को छू लेते हैं। आज का यह समय जो है, ये जो सफर है, बेहद खास है, क्योंकि आज मेरी जुबान से जो बातें निकलेंगी वो दरअसल आपके दिलों की आवाज है। हमारे फेसबुक पेज पर आए आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपकी फरमाइशें और आपके पैगाम इस महफिल की रौनक बनने वाले हैं। तो थाम लीजिए दिल और जुड़ जाइए इस खूबसूरत सफर में, क्योंकि शुरुआत होने जा रही है दिल से दिल तक की।

जो सबसे पहला हम फेसबुक कमेंट्स ले रहे हैं वो है हनुमानगढ़ नाईवाला से भेजा गया आपका संदेश। आप हैं वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, आपके इस दार्शनिक कमेंट के लिए बेहद धन्यवाद। आप लिखते हैं, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है, खामोश रहिए और कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। बिल्कुल ठीक कहा वेद जी आपने, कितनी बड़ी बात है आपने इतने सरल शब्दों में कही। वाकई इस दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ऊपर वाले की है, जहां किसी वकील के नहीं सिर्फ हमारे कर्मों की गवाही चलती है, और आपकी वो बात सीधे दिल पार कर गई। बड़ा आदमी बनने से अच्छा है वो छोटापन जिसका मजा अनूठा होता है, क्योंकि समंदर में मिलने से पहले तक ही हर नदी का पानी मीठा होता है। क्या बात है, इंसान जब तक सादगी में रहता है ना साथियों, उसमें मिठास रहती है, अहंकार आते ही वो खारा हो जाता है। आपकी इस शानदार सोच को सलाम करते हुए, आपके कर्मों की इस मीठी नदी को सीधे सुरों के समंदर में छोड़ेंगे, आपको सुनवाएंगे गीत। लेकिन श्रोताओं आपको बता दें कि ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, इसमें हम आपके फेसबुक कमेंट्स वो भी चुनिंदा उनको शामिल करते हैं आपके नाम के साथ, लेकिन कोई फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है। अंबाला के बराड़ा से रवि कुमार राहुल जी का ये संदेश भी अध्यात्म, चिंतन, मनोविज्ञान और जीवन के गहरे यथार्थ पर अद्भुत मिश्रण है। साथियों, अभाव, भाव और स्वभाव की परिभाषा हर किसी को आत्ममंथन करने पे मजबूर कर देती है। श्रोताओं आप सुन रहे हैं आपका अपना चहेता शो दिल से दिल तक, और मैं आपके साथ रेडियो साथी चंद्र प्रकाश बेदी। रवि जी कहते हैं कि हमारे क्लेश की, हमारे दुखों की तीन जड़ें हैं, अभाव, भाव और स्वभाव।

जब किसी चीज का अभाव होता है तो उसका न होना हमें दुख देता है, और जब उसका भाव आ जाता है यानी वो चीज हमें मिल जाती है तो हमारे अंदर घमंड या अहंकार आ जाता है, और जब सब कुछ मिल जाए तब हमारा स्वभाव ही हमारी असली परीक्षा बन जाता है, जो सब होने पर भी हमें चैन नहीं लेने देता। इतनी कड़वी और सच्ची बात है रवि जी। वाकई इस दुनिया में सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ा तप यही है कि इंसान के पास सब कुछ हो, दौलत हो, शोहरत हो, रुतबा हो, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव एक छोटे बच्चे की तरह सरल और निश्चल बना रहे। अगर स्वभाव सुधर जाए तो जिंदगी के सारे क्लेश खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। अंबाला से इतनी अनमोल सोच हमारे साथ साझा करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।

साथियों, चलिए यादों और जज्बातों के इस सिलसिले का आगाज करते हैं और रुख करते हैं हमारे फेसबुक वॉल की तरफ। देखते हैं आज हमारे किस दोस्त ने दिल की बात साझा की है, और उनमें है छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात साझा की। आप लिखते हैं, जिनके स्वभाव में प्रेम बसा हो उनके दरवाजे पर खुशियां खुद चलकर आती है। जी हाँ, जो गीत हमने सुनाया है आपको वो इसी से संबंधित है। वाकई प्रेम कोई चीज नहीं जिसे हम ढूंढें, यह तो एक एहसास है, एक स्वभाव है। जब हम अपने भीतर प्रेम का दीपक जला लेते हैं तो रोशनी अपने आप हमारे जीवन में आने लगती है। आप दोनों का आभार, कितनी सुंदर और सकारात्मक सोच हमारे साथ साझा की।

फेसबुक पेज पर हमारे एक बेहद अजीज श्रोता लिखते हैं, उनकी लाइनें सीधे दिल को छूती है। क्या है वो आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के प्लारी से निदेश और ईशान जी साथी धनुजा जी ने मिलकर संगति यानी कंपनी के महत्व पर बहुत ही सच्ची और जीवनोपयोगी बात कही है। संत कबीर भी कहते हैं, जैसी संगति बैठिए तेसो ही पल थीन। जी हाँ, ये जो कमेंट है साथियों बेहद ही उपयोगी है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं, संगति का असर इंसान पर जरूर पड़ता है। इसे इस बात की बेहद सरल और सटीक शब्दों में पिरोकर आपने भेजा है। और जो है आप देवांगन परिवार जो है लिखते हैं कि व्यक्ति जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। बुरी संगति जहां धीरे धीरे मन को काला कर देती है, वहीं अच्छे लोगों की संगति जीवन को बेहतर बनाती है। आप नितेश जी और ईशान जी तनुजा जी तीनों ने मिलकर ये जो बड़ा सच हमारे सामने रखा है, अच्छी बात है कि कहते हैं ना कि पारस के संग रहने से लोहा भी सोना बन जाता है और इत्र बेचने वालों के साथ खड़े रहने से खुद ब खुद खुशबू आने लगती है। संगति ही हमारे चरित्र और हमारा भविष्य तय करती है। साथियों आप इतनी सुंदर बात साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: एक चाबी होती है।
1: एक चाबी है CKYC ID।
0: CKYC मतलब?
1: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, RBI कहता है
1: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
4: वेलकम बैक साथियों, आकाशवाणी पर लहरों के सहारे आपके दिलों को छूने आ गया है आपका अपना शो दिल से दिल तक, और मुस्कुराते हुए आपके साथ जुड़ चुका है आपका साथी चंद्र प्रकाश बेदी। दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज पर मरुधरा की पावन मिट्टी यानी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के पदमपुर से हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता मेहर अरोड़ा जी, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा जी ने बहुत ही अच्छी बात हमें लिख भेजी है। आपने बड़ी ही लाजवाब और हौसला बढ़ाने वाली बात कही है। बिल्कुल सच है, गिरने में कोई बुराई नहीं, लेकिन गिरकर खड़े होने की कोशिश ही न करना, असली हार तो वो है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो या तो जीतता है या फिर एक बहुत बड़ा तजुर्बा सीखता है। पदमपुर से मेहर जी, आपने ये जो इतनी कमाल की और प्रेरणादायी सोच हमारे इस मंच पर आपने दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आप भी सुनना चाहते हैं अपने कमेंट्स को, यदि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो उठाइए अपना स्मार्टफोन, जाइए आकाशवाणी चूरू की ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और लिख दीजिए अपने दिल का हाल। मैं यानी चंद्र प्रकाश बेदी आपके हर जज्बात को यहाँ अपनी आवाज देने के लिए तैयार हूँ। साथियों, आप समझें कि केवल इसमें चुनिंदा जो कॉमेंट्स हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है।

जी हाँ श्रोताओं, आपने जो लिखा है वो बहुत ही प्यारा संदेश भेजा है फेसबुक पेज पर। महाराष्ट्र के सोलापुर में दयानंद जो हैं आप हैं, भवानीपेट से विष्णु मिश्किन दीदी का, वाणी आरव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ संगीता, आरोही प्रियांशी सोनी, आपने एक बेहद ही शानदार सा जो हमें फेसबुक कमेंट भेजा है कि आज के दौर में सड़क दुर्घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। जी हाँ, हम आपकी बात बेहद स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि एक एक बात में कितनी सच्चाई है, अपनों की कितनी फिक्र आपको है। जब हम घर से गाड़ी लेकर निकलते हैं ना, तो कोई ना कोई घर पर हमारा इंतजार कर रहा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करने लगते हैं या सीट बेल्ट या हेलमेट को बोझ समझते हैं। याद रखिए, वाहन तेज चलाने से मंजिल जल्दी जाए मिल जाए यह जरूरी नहीं, लेकिन सावधानी से चलाने पर सुरक्षित पहुंचना तय होता है। दुर्घटना से बेहतर है सावधानी, और सुरक्षा से बड़ा कोई लाभ नहीं। आपको आपका ये जो अनमोल विचार है बहुत हम सब के लिए जो है लाभकारी है, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी आप हम सबको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इसी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी

और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: किस्मत है तेरे पैर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना हो।
1: साथियों, कल 5 जून है यानी विश्व पर्यावरण दिवस, और इसी बेहद पावन और महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे फेसबुक पेज पर महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश के उन्हेल से हमारे बहुत ही जागरूक श्रोता भेरूपाल वाकतरिया धाकड़ जो है, आपने एक सुंदर विचार भेजा है। प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करती है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति को कुछ देना सीखें। धन्यवाद आपका, कितनी सच्ची और जरूरी बात आपने लिखी है। हम प्रकृति से सिर्फ लेना जानते हैं, शुद्ध हवा, पानी, फल फूल, छांव, लेकिन देने के नाम पर हम पीछे छूट जाते हैं। सिर्फ एक दिन स्टेटस लगाने या फोटो खिंचवाने से पर्यावरण नहीं बचेगा। असली पर्यावरण दिवस तब मनेगा जब हम एक पौधा लगाएंगे, उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा वृक्ष बनाएंगे, पेड़ बनाएंगे, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध सांसें मिल पाएंगी। इतनी बेहतरीन सोच के लिए आपका धन्यवाद।

साथियों, वक्त की सुइयां किसी के लिए नहीं ठहरती और घड़ी का ये इशारा कह रहा है कि अब आज के इस सफर को यहीं पर थामना होगा। फेसबुक के जरिए आज आप सब ने अपने दिलों की झरोखे हमारे लिए खोले, उसके लिए आप तमाम श्रोताओं का, हमारे फेसबुक मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया। आपकी मोहब्बत, आपकी कमेंट्स ही इस शो की असली जान है। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी फ्रिक्वेंसी पर फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर जुड़ेंगे दिल से दिल के तार। तब तक के लिए अपने दोस्त रेडियो साथी चंद्र प्रकाश बेदी को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी चूरू। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों के करीब रहिए।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहाँ पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं।

0: ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं, बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज, ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है. अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं. एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे. फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं. तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है. ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल. पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना. अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाक भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ. ठीक है, नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा. तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना. तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है. अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं. और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी. तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं. तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं. कौन सा गाना सुनवाया?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है.
1: ये धरती, ये नदियाँ और
0: विविध भारती और अलियावर जंग.
1: क्या बात है, सुनते हैं.
2: बड़े अच्छे लगते हैं

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4-5 साल के बाद हो जाता है, तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है। ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े

0: रोल मॉडल हैं, उनकी तो पीएचडी हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में. सो देर आर मैनी हु आर हैविंग हियरिंग लॉस और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं. हम हियरिंग लॉस के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको है, एंड गैलाडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं. सो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और एप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल.
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है. ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, एप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स इश्यूज नहीं आएंगे. हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो बीएसएलपी जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी. ओके, एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ. टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड. तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल. प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है. टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल.
1: बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है. आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन. हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहां पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है. अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल. ओके, अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टन साइंस जहाँ पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोरबेल. तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यस, द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज. बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है. बट वेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं. तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉक्लियर इम्प्लांट लगे या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है, तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक.
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है.
0: एग्जैक्टली,
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है. यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो.
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी.
1: जी, सुनते हैं.

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD Act जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग, एंड दोनों के टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं,
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट, हाँ,
0: तो उनके लिए भी
1: उनके लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू ऐड वन थिंग, कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके, तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके। तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
0: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बिठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें। क्लासरूम नॉइज को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस, इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है। तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज इज, जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है। तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दी है मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देयर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ईएनटी के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
0: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है, बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं उसमें

0: किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
1: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंड सेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफ़ी री इन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इशूज़ और कंसर्नस नहीं आते हैं. पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्नस आएंगे ही आएंगे. इट कैन बी उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम. तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है. तो ये कंसर्न्स जहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं. एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहाँ पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहाँ से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में. अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं. उसके पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है. तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो. फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं. इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, तो यस, आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो.
0: बिल्कुल.
1: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सबके, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स, ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विद योर स्पीच, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है. तो बिहेवियर्स plays an important role because जो hearing impaired होते हैं वो mostly visual learners होते हैं, they are more of visuals, okay? तो आपका बर्ताव, आपका attitude, आपका body language, ये सब बहुत important role play करता है. यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो that means that will affect the child.
0: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
1: okay. अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली. एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं. दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है. ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो जरूरत है या लर्निंग नीड्स है बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की जरूरत है. ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है. मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा. हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज कौन सी है, इस आवाज का मतलब क्या है, आवाज आ कहाँ से रही है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ओके एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है। तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा। हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूसली पहनना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए। जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा, जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड। सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है। मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी। नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा ओके okay? पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा ओके okay? टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में। नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं ओके वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना ओके ये शब्द है अगर खोलना तो हम तो कितनी सारी अलग अलग चीजें खोलते हैं ओके क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है ओके बुक इस तरीके से खुलती है ओके अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट ओके दैट प्रोसेस इज डिफरेंट। तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा आप अच्छा प्रोग्रेस होगा।
2: तो
1: हाँ जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं तो वो जो विजुअल थिंग्स है ओके दैट गोज इन हिज हेड ओके बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग। आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है, जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ ना कि नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड।
2: जी, तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं तो इनकी समझदारी में भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं, अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है यहाँ ले जाना है। तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
1: See, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है, राइट? एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा. ओके. कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग. एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज. ओके. पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज होते हैं. नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इशूज, नो अंडरलाइंग इशूज एज सच. बट येस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. बट अगेन सेम थिंग बॉयल्स डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ ही नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं. वैसे
2: बिल्कुल. यहाँ हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये मुंबई है मेरी जान, ऐ दिल है मुश्किल.
2: ऐ दिल है मुश्किल जी ना, ये जी सुनते हैं ये गाना.

0: डॉक्टर गायत्री हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल हैं, तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूँ तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊं? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको

0: करते हैं. अडैप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट, हम उसको चेंजेस करते हैं. चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं. अगेन कमिंग टू बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है. हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो. पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं, और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं. एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है. और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है. नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो. तो जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज़्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है.
1: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं.
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो. स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो. हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफ़ी डिफिकल्ट है, यू नो मैं एजुकेशन कहाँ से लूँ और कैसे लूँ. एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और को BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है, या डिसलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन. ओके, दैट इज एज पर द स्कीम बच्चे के लिए फ्री है. अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है तो इट इज टोटली फ्री. तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे. तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में. सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस. पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू यू नो डेवलप अवेयरनेस. और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है तो मुझे कहाँ जाना है. ओके, ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है. अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, यू नो दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देर इज नो इंटरप्रेटर. ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज्यादा इनरोल होना जरूरी है. थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी. इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे से होगा. हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, पर फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइनअप हम करें तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे.
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे. कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल
1: नोट, आप तो हेड हैं, डिपार्टमेंट की हेड हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं.
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं. एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड. ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे. एंड आई यूज्ड टू फील ऐसे ये कुछ अलग है, ये क्या है. ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं. एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स. कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी

0: एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं. दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है. बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफी ज्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है. एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू. ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मींस फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज को देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज़ उनके पहुँच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है, तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जाँच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है, वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना हैव अ वर्टिको इश्यूज एंड ऑल. ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट. फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहाँ पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एजुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से के पीएचडी तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड काफी सारी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच दी अनरीच. तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो ओके वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHDNIC वेबसाइट है. आप वहाँ जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी, जिनके घर में जिन बच्चों को, जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.
0: श्योर.
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट. तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विद मी.
1: तुमको देखा तो ये ख्याल है,
0: ऑल गुड.
1: तो सुनते हैं,
0: ठीक है.

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहाँ कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम, एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग, सो थैंक्स टू देम। थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जन संस्था को। थैंक यू सो मच।
0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से

अब से थोड़ी ही देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे दिन के 12:00। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अलाउद्दीन लंगा और साथियों को।

आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे दिन में 1 बजे। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दिन में 1:05 पर। आकाशवाणी दिल्ली से रिले मिड डे न्यूज का प्रसारण होगा दोपहर 2 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार आप सुनेंगे दोपहर 2:15 पर।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने अब सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ हमारी आज के सायंकालीन सभा आरंभ होगी 4:00। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे 5:00। शाम 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही होंगे 6:05 पर। संस्कृत में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से ही होगा 6:20 पर। शाम 6:30 पर आप रुक करेंगे आकाशवाणी जयपुर, जहां से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे 6:30 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे 6:45 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से ही होगा 6:40 पर। कार्यक्रम किसान वाणी होगा 7:00।

शाम 7:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। फिल्म संगीत पर आधारित गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:45 का समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार संध्या के अंक के लिए। News@9 का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से ही होगा रात्रि 9 बजे। राजस्थानी लोक संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से कंट्री वाइड का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। आकाशवाणी दिल्ली से रिले प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे। सभा के अंत में हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से ही होगा रात्रि 11:05 पर।

कार्यक्रम विवरण में अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का पहला गीत आपने सुना था अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म दिल का रिश्ता। इस गीत में शब्द समीर के थे और संगीत नदीम श्रवण का।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोता अभी अपने रेडियो सेट पे सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया जा रहा है FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। चित्रपट संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं आनंद पक्षी की शब्द रचना को विजू शाह के संगीत में। आवाज है साधना सरगम की फिल्म विश्वात्मा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म का गीत। आवाजें थी अनु मलिक और कुमार सानू की। इस गीत को शब्द दिए थे देव कोहले ने और संगीत था अनु मलिक का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में दम लगा के हईशा फिल्म से। इसमें गीत को कलमबद्ध किया है वरुण ग्रोवर ने और संगीत अनु मलिक का है।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

एक रिश्ता। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। इस गीत में शब्द दिए थे समीर ने और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे कच्चे धागे फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर और कुमार सानू की। इस गीत को कलमबद्ध किया था आनंद बख्शी ने और संगीत था नुसरत फतेह अली खान का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत पर आधारित चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: मैं हूँ विमलेश
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
0: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
0: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
0: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
0: अजीत जी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ हमने उस इलाके को देखा भी है।
0: जी बिल्कुल मुझे भी याद है। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
0: अजीत जी इसका कारण ये है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
0: जी वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी
0: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं यहाँ का तापमान

0: श्रोता एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा
1: जी।
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं, ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ, जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे विलो कहा जाता है
0: जी।
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है
0: जी। ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे

0: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था। लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते, ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और।

0: और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
0: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
0: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच। अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
3: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
2: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
4: सर, क्या हम

0: अंदर आ सकते हैं?
1: कौन? ओ अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ शाबाश।
2: क्या अभी आपके पास समय होगा?
1: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
0: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
1: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
2: जी वही।
0: जी वही सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
1: अच्छा।
2: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
1: और
2: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
1: हाँ, बोलो बोलो।
2: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
2: 5000 वर्ष पहले?
1: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
0: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
1: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
2: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
1: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
2: अच्छा।
1: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
2: जैसे?
1: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
2: वैदिक समूह?
1: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
2: भरत?
0: भरत नाम तो हमने सुना है।
1: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
2: ओ भरत, अच्छा तो ये बात है।
1: हाँ।
2: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
0: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
1: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
2: वो क्या सर?
1: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
0: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
2: भला ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
2: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
2: है ही नहीं?
1: हाँ।
2: ऐसा कैसे?
1: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
2: ओ।
1: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
2: हिंदू।
1: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
2: तो फिर?
1: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
0: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
2: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
2: अच्छा।

0: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल।
0: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
0: अच्छा।
1: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारत वर्ष भी कहा गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
0: वो क्या?
1: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारत वर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ?
0: ये नाम भला क्यों?
1: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
0: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
1: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
0: इतने सारे देश?
1: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
0: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: ये नाम कैसे आए?
1: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
0: जी सर।
1: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
0: अच्छा।
1: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
0: ओ।
1: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
0: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
1: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
0: ओ।
1: हाँ,
0: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडोई या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
1: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
0: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
1: हाँ।
0: और हिंदुस्तान?
1: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
0: अफगानिस्तान।
1: बिल्कुल सही।
0: बलूचिस्तान।
1: सही।
0: तुर्किस्तान।
1: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
0: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
1: अच्छा?
0: हाँ, बिल्कुल।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
0: अच्छा।
1: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
0: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, we the people of India।
1: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
0: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
0: सबके साथ?
1: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
6: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
7: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
8: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
7: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
8: हाँ पूछो बेटा।
7: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
8: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
6: लेकिन माँ,
8: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
7: जी,
8: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
7: अच्छा माँ, ये लो माँ।
8: ला।
6: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
7: मिल गया, मिल गया मुझे, अरे मिल गया मुझे,
8: क्या मिल गया
7: मुझे, माँ,
8: क्या मिल गया, क्या मिल गया,
7: मुझे मिल गया,
6: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
8: जोसेफ क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
7: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया, हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
6: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
7: स्टीफन, स्टीफन, माँ, माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो, इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें क्या उड़ रहा है बताओ, बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
8: कुछ भी तो नहीं,
6: कुछ भी तो नहीं है।
7: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है?
6: राख?
7: उड़ रही है ना?
6: वो तो है मगर
7: इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
6: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो,
7: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
6: हाँ।
7: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
6: हाँ, ये बात तो है, चलो चलो जोसेफ चलो देखते हैं।
7: ठीक है, आओ मेरे साथ।
8: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ सुनो तो।
5: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।

0: बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
1: हाँ भाई, भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
0: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
1: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
0: आओ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते।
1: अरे अरे, वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
0: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ,
1: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो, एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
0: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
1: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
0: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
1: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो, वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
0: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
1: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
0: बहुत अच्छे, देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
2: ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं।

0: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित।

अभी आप सुन रहे थे अलाउद्दीन लंगा और साथियों की आवाजों में लोक संगीत। कार्यक्रम था माटी के स्वर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में।

नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप का उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करना है। प्रतियोगिता में 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। योगासन भारत की यह पहल वैश्विक स्तर पर योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों सहित 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा

निकालेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। वर्ष 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश

0: इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली शुरू हुई। सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए वर्ष 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम की शुरुआत की गई। जैम पर अब तक कुल कारोबार 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज 2 योजना में चयनित गांवों में अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाएंगे। युद्ध की स्थिति में खतरे का सायरन बजते ही ग्रामीण इन बंकरों में शरण ले सकेंगे। इस योजना में श्रीगंगानगर जिले के 68 सीमावर्ती गांवों का चयन किया गया है। जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि इनमें सबसे अधिक 20 गांव घड़साना उपखंड क्षेत्र के हैं। इन गांवों में कम्युनिटी हॉल के नीचे इन बंकरों का निर्माण किया जाएगा। श्री यादव ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य चयनित गांवों को पक्की सड़कों और मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जनाभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में निबंध, नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से वर्षा जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण का संदेश दिया जा रहा है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सरकारी भवनों में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की साफ सफाई की जा रही है। विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल चौपाल के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कल इस अभियान का समापन होगा। इस दौरान जिला स्तरीय समारोह में जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा की 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज कई इलाकों में सुबह बरसात हुई। भीलवाड़ा में ग्रामीण इलाकों में तेज बरसात का दौर चला। वहीं सवाई माधोपुर में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1:05 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

जी बहनों, इस प्यारे से गीत के बाद में फिर से स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की सरकार को 12 वर्ष हो चुके हैं और इन सालों में उन्होंने हमारे महिला

महिलाओं के लिए, बहनों के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे महिलाओं की उन्नति हो, प्रोग्रेस करें और वो हमेशा आगे बढ़ती रहें। और इसमें जैसे हम बात करें, 12 वर्षों में भारत सरकार ने जो महिला कल्याण की सोच से आगे बढ़कर कह सकते हैं कि महिला नीति विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। और इन वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए कई अभूतपूर्व कदम भी उठाए हैं। और अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हमारी सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए किए हैं। जैसे कि हम राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जैसे कि आपने सुना ही होगा, इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसको सुनिश्चित किया गया है। जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि महिलाओं की गरिमा, निजता और स्वास्थ्य से अधिक सुधार करने के लिए देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए थे। और जल जीवन मिशन की अगर हम बात करते हैं तो हर घर जल पहुँचाने की इस पहल से करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को दूर दराज से पानी लाने की दैनिक परेशानी से मुक्ति मिली है। इसके साथ ही बहनों, आर्थिक आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं तो जैसे कि मुद्रा योजना की बात करें, महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 10 लाख तक के ऋण दिए गए और इसके अंतर्गत महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। महिला सम्मान बचत पत्र भी शुरुआत की गई इसकी, विशेष रूप से महिला निवेशकों के लिए एक शानदार लघु बचत योजना जो आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है। इसी तरह से हम बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, महिलाओं के नाम पर करोड़ों जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले गए और इससे महिलाओं को बहुत लाभ पहुंचा। इसके साथ साथ स्टैंडअप इंडिया और लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी, इस तरह की बहुत सारी योजनाएँ शुरू की गई। साथ ही बहनों, अगर मातृ स्वास्थ्य और पोषण की बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जो कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पहले बच्चे के जन्म पर पोषण के लिए 5,000 की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में जमा की जाती थी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके बारे में आप जानते ही हैं सभी, गरीब महिलाओं को धैर्य से बचाने और स्वस्थ ईंधन देने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए किए गए था कार्य ये। और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं के संरक्षण, घटते लिंगानुपात को सुधारने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जन आंदोलन शुरू किया गया। इसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना, मिशन शक्ति योजना, इस तरह से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई थी। जैसे कि मिशन शक्ति योजना के बारे में हम बात करते हैं तो हिंसा और संकट से पीड़ित महिलाओं को पुलिस सहायता, चिकित्सा, कानूनी सलाह और अस्थायी आश्रय एक ही छत के नीचे प्रदान करने के लिए देश भर में सखी केंद्र भी बनाए गए और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया गया। इस तरह से हमारे देश की सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत सारे किए गए कार्य थे और बहुत सारे कार्य आगे भी किए जा रहे हैं।

जी बहनों, मौसम गर्मी का है और गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा अगर हम पी लेते हैं तो राहत मिल जाती है, लेकिन ठंडा भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि फिर आपके शरीर को भी नुकसान नहीं करे और आपकी सेहत भी ठीक रखे। तो हम बात करते हैं गोंद कतीरा की। गर्मियों में गोंद कतीरा का उपयोग शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने, लू से बचने और पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए एक बेहतरीन आयुर्वेदिक उपाय है। गोंद कतीरा के बहुत सारे फायदे हैं, आपसे शेयर करना चाहेंगे। शरीर में ठंडक देता है गोंद कतीरा, इसकी तासीर बेहद ठंडी होती है। यह गर्मियों की तेज धूप और लू से बचाने में ढाल की तरह काम करता है। और बात करें बहनों डिहाइड्रेशन से बचाव की, तो यह अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोख लेता है, जिससे शरीर लंबे समय तक हाइड्रेट रहता है। पाचन और कब्ज की बात करें तो इसमें भी ये राहत देता है। इसमें भरपूर फाइबर होता है जो पेट की जलन, एसिडिटी और कब्ज को भी दूर करता है। त्वचा के लिए भी बहनों ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके सेवन से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है और गर्मियों के रैशेज जो होते हैं वो कम होते हैं। और अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो इसलिए गर्मियों में इसका सेवन आप ज़रूर करें। और अब इसका तरीका जो होता है भिगोने का वो आपको बता देते हैं। इसको रात को सोने से पहले आप एक छोटा चम्मच गोंद कतीरा अगर आप भिगो देते हैं तो वो सुबह तक बहुत ज़्यादा फूल जाता है और एक जेली की तरह बन जाता है। मुलायम और सॉफ्ट होता है और पारदर्शी होता है। इसका सेवन करने के लिए जैसे आपने नींबू पानी बनाया है, शिकंजी बनाते हैं, या ठंडे दूध में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, गुलाब शरबत में यूज़ कर सकते हैं, या किसी तरह का अगर आप शेक बनाते हैं तो उसमें भी एक चम्मच अगर डाल के आप पीते हैं तो आपके सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहता है। इसके साथ आप फलों की जो स्मूदी होती है या जो फालूदा होता है उसके साथ में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके अंदर आप एक चम्मच मिला लेते हैं तो ये बेहद फायदेमंद रहता है। गोंद कतीरा का सेवन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बहनों, कि अगर आप दिन भर जब आप इसका सेवन करते हैं तो हम लोग एसी या जो कूलर में बैठे रहते हैं, फैन के नीचे रहते हैं, तो हमें प्यास नहीं लगती है, कम लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप गोंद कतीरा का सेवन कर रहे हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीते रहना है, पानी की कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो ये बेहद फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो इसका असर कम होता है। तो गोंद कतीरा गर्मियों में ज़रूर पिएं।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: जी बहनों, गर्मियों का मौसम है तो थोड़ा सा ठंडे की बात और कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में पीना। हम बात कर रहे हैं सब्जा के बीज के बारे में, जिन्हें तकरमिया या मीठी तुलसी के बीज भी कहा जाता है। काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं ये, और पानी में भिगोने पर ये फूल जाते हैं और इनके चारों तरफ एक पारदर्शी जेली जैसी परत बन जाती है। आपने इसको ज़रूर उपयोग किया होगा। और इसके फ़ायदे के बारे में हम आपको बता देते हैं बहनों, कि शरीर को तो ठंडा रखते हैं, इनकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। जो ये चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, इससे शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ बहनों, पाचन और पेट के लिए भी ये जो सब्जा बीज होते हैं वो रामबाण का काम करते हैं। इसमें भरपूर फाइबर होता है जो गैस एसिडिटी और पेट की जो भी समस्या है उसको दूर करता है। इसकी जेली पेट की परत को ठंडक और आराम पहुंचाती है। इसके साथ ही बहनों, ये वजन को भी नियंत्रित करने में मददगार होते हैं। जो बहनें या जो भी लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, इसका उपयोग अगर करते हैं तो वो ठंडा भी रहता है और वजन भी कम करता है। पानी में भीगने के बाद ये फूल जाते हैं, जिससे पेट का जो भरा हुआ महसूस होता है, इससे बार बार भूख नहीं लगती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है, शरीर में शुगर के अवशोषण को धीमा करते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड शुगर का जो स्तर है वो नियंत्रित रहता है। इसके साथ ही मैंने उपयोग करने का तरीका आपको बता देते हैं। इसको जो एक भगोना ले लें, कोई बड़ा बर्तन ले लें, उसमें एक गिलास पानी में एक चम्मच सब्जा के जो बीज हैं वो डाल दें और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। बीज जब फूल कर अपनी मात्रा को कई गुना बढ़ा लें तो इसकी जो एक जेली की तरह बन जाता है। और इस जेली को आप अपने जो शिकंजी है, नींबू पानी है या कोई भी आप शरबत बना रहे हैं उसके अंदर काम में ले सकते हैं। आप इन फूले मिश्रण को सादे पानी में भी काम में ले सकते हैं या नारियल पानी के साथ में भी आप इसको ले सकते हैं। इसकी स्मूदी होती है उसको मिलाकर आप शेक में भी पी सकते हैं। इस तरह से आप इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके साथ ही बहनों, जैसे अपने देश की बात करें, हम भारत में ये जो फालूदा हम लोग बनाते हैं या कुल्फी भी जब बनाते हैं घर में भी या बाहर से भी हम कुल्फी लेके आते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर आपकी डाइट में आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं, यानी कि जैसे हमने बात की है अभी सब्जा बीज या और भी किसी चीज़ की कोई बदलाव कर रहे हैं, तो उससे पहले एक बार अपने जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप ज़रूर सलाह ले लें। क्योंकि हो सकता है अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं या आपको कोई पहले से कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो भी चीज़ चेंज करते हैं खाने पीने में तो वो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसलिए आप कोई भी चीज़ का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, तो अपने चिकित्सक से ज़रूर सलाह लीजिएगा।

जी बहनों, जब खाने की बात चली है तो हम बात करते हैं प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के बारे में। जो प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ है उनका सेवन करने से पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं ये, जो पेट के स्वास्थ्य को सुधारने में बेहद मददगार होते हैं। ये आंतों के माइक्रोबायोम को संतुलित करते हैं, गैस और सूजन को कम करते हैं और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की शरीर की क्षमता को बढ़ाते हैं। और प्रोबायोटिक भरपूर खाद्य पदार्थों का आसानी से अपने दैनिक जीवन में आहार में आप इनको काम में ले सकते हैं।

सकते हैं। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले नाम आता है इसमें दही का। ये प्रायोबायोटिक्स के सबसे बेहतरीन और आम स्रोत हैं। इसमें अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। दही का सेवन वैसे भी बहनों गर्मियों में सही रहता है, वो पाचन शक्ति के लिए भी अच्छी होती है, तो आप इसका ज़रूर सेवन करें। पनीर और केफिर की बात करें तो इसमें किण्वित दूध से बने उत्पाद अच्छे बैक्टीरिया से भरपूर होते हैं, तो आप कोशिश करें कि पनीर का आप सप्ताह में या कम से कम 15 दिन से ज़रूर आप इस्तेमाल करें, सेवन करें। ये भी पाचन के लिए, पेट के लिए सही रहता है। इसके साथ ही जैसे इडली और डोसा का जो बैटर होता है, उसमें किण्वित दाल चावल से बने इन खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से प्रायोबायोटिक्स पनपते हैं, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके बाद बहनों हम बात करते हैं अचार के बारे में। तो सिरके या तेल के बजाय प्राकृतिक रूप से खमीर उठाकर बनाए गए अचार में पेट, ये जो होता है प्राकृतिक रूप से अगर हम खमीर उठाकर अचार बनाते हैं तो पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो आप इस तरीके से अचार ज़रूर बनाएं। पेट के लिए इसका और भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे हम बात करें पाचन और गैस से राहत के लिए, तो यह भोजन को ठीक से पचाने में मदद करते हैं। जैसे गैस, पेट फूलना और मरोड़ जैसी समस्या या पेट में दर्द होना, इन सब समस्याओं से ये राहत देते हैं। साथ ही जैसे बात करें हम आंतों के स्वास्थ्य के लिए, तो यह अल्सरटिव कोलाइटिस और क्रोहन रोग जैसी जो सूजन संबंधी आंतों की जो बीमारियां होती है उनके लक्षण को भी नियंत्रित करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने में भी जो ये है वो फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही बहनों इन अपने दैनिक आहार में हमें इन्हें जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ जैसे हम बात करते हैं दही, छाछ, अचार, पनीर और डार्क चॉकलेट, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। जब बात चलती है चॉकलेट के बारे में तो बहनों कई बार हमारे घर में बच्चे ज़िद भी कर लेते हैं कि नहीं हमें चॉकलेट खाना है, तो हम हर तरह की चॉकलेट उन्हें ना दें, उससे दांत खराब होने की भी समस्या सामने आ सकती है। तो जो डार्क चॉकलेट होती है उसका आप सेवन करें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो जो प्रायोबायोटिक्स जो प्राकृतिक स्रोत है उनका आप सेवन करके अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं।

जी बहनों, भीषण गर्मी से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि खुद को हाइड्रेट रखें और हल्के सूती कपड़े पहनें। दोपहर में कोशिश करें कि 12 से 3 बजे के बीच में धूप में ना निकलें। अगर आपको बाहर निकलना भी है तो आप पूरा उपाय करके निकलें, सर को ढक के सूती कपड़े से, फिर आप बाहर निकलें सनस्क्रीन वगैरह लगा के। इसके साथ साथ अपने खान पान का ध्यान रखिए, पानी बहुत ज़्यादा पीते रहें और लिक्विड डाइट जो है आपकी वो आप लेते रहें। ठंडी तासीर के जो फल होते हैं उनका इस्तेमाल करें और मौसमी फलों का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो कपड़े हैं आपके पहनने के वो सूती हों और हल्के कलर के होने चाहिए। साथ ही अपने जो घर की खिड़कियां हैं सुबह सुबह आप थोड़ी देर के लिए खोलें वेंटिलेशन के लिए, उसके बाद में आप उनको बंद कर दें। और पूरे दिन में आप उनके ऊपर पर्दे लगा के रखेंगे तो आपका घर भी ठंडा रहेगा और पर्दे भी आपके थोड़े मोटे होने चाहिए और हल्के कलर के होने चाहिए। इससे आपका घर भी ठंडा रहेगा और आप धूप से गर्मी से बचे भी रहेंगे।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

Gracias.

यह समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी संसद ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी

Bạn nào có thể biết thì bạn có thể tìm hiểu mọi việc gì hết.